0: दर्द उसने सुनाया है, दुखी मर्दाना गुरु कोल आया है, दिल दा दर्द उसने सुनाया है।
1: सुन के बचन गुरु जी उचार दे।

खुद नू कहूं दारा भी एक दारी है, हमें दाए रोगी डाटा हंकारी है। खुद नू कहूं दारा भी एक दारी है, हमें दाए रोगी डाटा।

0: तू भी साढ़े नाल दा खत्री भराई आ गुरु के सिंह कईआं दिनां दे भुखे ते प्यासे हन
1: लिख बे जी इम खालसे जसपत को अरदास
0: इस तरह गुरु के खालसे ने जसपत राय नूं चिट्ठी

गए मशकत का नानक ते मुख उजले किति छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी।

0: जन्म मरण दुख जाए ताना वाहिगुरु जी टोडी महला पंजवा सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमारी सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमारी रहा अवर न सूझे दूजी ठहारा हार पर्यो तो द्वारी लेखा छोड़ अलेखे छुट्ट हम निर्गुणा लिह उबारी शत बक्सेंद सदा मेहरबाना सबना दे अदारी नानक दा संत पाछे भरियो राग ले हो ए बारी साध बख्शेंद सदा मेहरबाना सवना दे अदारी नानक दा संत पाछे भरिया राख ले हो एह बारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी सोट महला पंजवा गुर का शब्द रखवारे चौकी चौ गिरद हमारे राम नाम मन लागा जमल जाय कर भागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करी मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता रहाओ नानक प्रभ अविनासी ताकि सेवन बिरती जासी आनंद करह तेरे दासा जा पूर्ण हुई आसा बिलावल महला पांजेवा ताती भावना लग गई पार ब्रह्म शरण आई जो गिरद हमारे राम कार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई राम नाम

है मेरा सत गुरु सो थान राम राजे विसर नाही दातार विसर नाही दातार अपना

जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक हुसी भी सच सोचे सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस स्याण पा लख हो हे ता इक न चलै नाल

निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह है उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार।

आओ अंतरगत तीर्थ मल नहाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोई, विण गुण कीते भगत न होए। स्वस्थाथ बाणी बरमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ, कवन सवेला वक्त कवन, कवन थित कवन बा।

आदिस से आदिस, आदि अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस, भुगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जा की रद सद अवरा साद।

दान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, आजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, चूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंद है, अबंध है, निर्भूज है, सूज है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक

अनम्य समस्ति स्वरूपी परपंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंक विना कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो सस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवे सोतर्मे।

अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगी अचल भोगी अचल राजी अटल साजी अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पीवंग सर्वंग का

सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जा कर रूप रंग न रीख आदि पुरुष उदार मूर्त जोन आदि सीख देश और न पेश जा कर।

एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जान ही जे वेद और कतेव रूप रंग न जात पात सुजान के जीव तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र वकर फिर चतर चकमा नई पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जाप ही जेह जाप आद देवन आद मूर्त था प्यो सब है जेह थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्वर चूसयम पवगण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख अदीस धर्म ताम सु परम रहत भूत अलख अपीस अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुस्त देख पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन याद रूप असूत अंग हीन भंग अनात्म एक पुरख अपार सर्वलायक सर्वकायक सर्व को प्रतिपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपीख सर्वशास्त्र न जान ही जिह रूप रंग अर रीख परम वेद पुराण जा कह नेत पाखत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आव ही बोह चित मद पार छंद त्वय प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनपौ प्रकाश निस्दिन अनास आजान बाहु साहान साहु राजान राजपानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आबा अपंग गतमित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निरपैन काम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलस्य कर्म अदृश्य धर्म।

पुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दान्य चतर चक्र जान्य चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाली चतर चक्र काली चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र पृथिस अदिश अदृश अकृस भगवती शांद त्वे प्रसाद कथते किया शिज दिस किया पिज पिस किया गंज कर्म किया पंज परम किया पिज लोके किया दुत सोके के वधूत वरने कि विभूत करने कि राजंग प्रवाह है कि धर्मंग तुझा है कि अशोक वर्ण है कि सर्वा अपर्ण है कि जगतंग कृति है कि शत्रंग क्षत्रि है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुपहु अनु

कि अफवल गुनाह है कि साहन साह है, के कारण को निंद है कि रुजी देहंद है, कि राज करहीम है कि कर्मं करीम है, कि सर्वं कली है कि सर्वं दली है, कि सर्वत्र मन है कि सर्वत्र धन है, कि सर्वत्र गौन है कि सर्वत्र पवन है, कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पिस है, कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र सज है, कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है, कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु, कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है, कि सर्वत्र कल है कि सर्वत्र पल है, कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र घंता, कि सर्वत्र भीखी कि सर्वत्र भीखी, कि सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज है, कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भुख है, कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है, कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है, कि सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है, कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र थाप्य है, कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान्य है, कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है, कि सर्वंग कलीम है कि परमंग फहीम है, कि आकल अलम है कि साहिब कलम है, कि हुस्नल वजू है तमाम उल रुजू है, हमेशल सलाम है सलीखत मुदाम है, गनीमल सिकस्त है गरीबल परस्त है, बिलुंदुल मकान है जमीन अल जमान है, तमीजल तमाम है रुजूअल निदान है, हरीफल अजीम है रजायक यकीन है, अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है, अजीजल निवाज है गनीमल खिराज है, निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुगत प्रवाह है सुजुगत सुदा है, सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है, समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है, समस्तल सलाम है सदैवल अकाम है, निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है, ओ अंगाद रूपे अनाद स्वरूपे अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभृगंग त्रिभादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागी सुसर्वा अनुराग त्रिभुगत स्वरूप है, अछज है अशूत है, कि नरकंग प्रणास है पृथ्वील प्रवास है, निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है, विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है, निरुक्त सदा है विभुगत प्रवाह है, अनुगत स्वरूप है प्रजुगत।

नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासी अगंजल अनामे समस्तल निवासी नरकामंग बेपूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करिमुलक निंदा समस्तल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनीमे हरियं करियं करिमुल रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते।

गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवी त्वै प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिर कर जोग जति के सुर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न दीक्षित प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते बतंग जरे जर संग अनुपो तंग सुरंग सवारी कूट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिदन्यावत शीसना जात विचारे इते पहे तो कहा पहे भूपत अंत को नंगे ही पाए पधारे जीत फिर स्वदेश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ खजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान पजीवन अंत कौ अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दमदान सो संजम नेम अनेक वसिख वेद पुराण कतेव कुरान जमीन जमान सबान की पिख पौन आहार जति जत तहार सवै सो विचार हजार के दिख श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरिन मरोर मवासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अपचार है सार की तार पछैया तूर्त देश मलिंद मवासन मातिक जान की मान मलैया गाड़े गडान के तोड़न हार सोबा तन ही चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के वह पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सतर सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंद्र नरादब जौन त्रलोक को राज करेंगे कोट स्नान गुजाद खदान अनेक सो अंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सच्ची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस हैं पग

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सीती मन वजिया वाधाईया राग रतन परवार प्रिया सबद।

तू सदा सच संभाले, एह कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरा नाले, साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइयै, ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताइयै, सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले, कह नानक मन प्यारी तू सदा सच संभाले, अगम गोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किने तेरा, अपना आप तू जान हे जी, अजंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखाण आए, आखै ता वेखै सब तू है जिन जग तो पाया, कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया, सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया, जी अजंत सब तुद उपाय इक वेख परसन आया, लभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया, कह नानक जिसनो आप तुठा तन अमृत गुर ते पाया, भगता की चाल निराली चाला निराली भगता हकीरी, बेखम मार्ग चलना लभ लोभ अहंकार तज त्रसना बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी वाल हो निकी एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी, कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली, जो तू चलाए हे तव चलहै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाए हे तवै चलहै जिना मार्ग पावहि, कर कृपा जन नाम लाए हे से हर हर सदा त्यावहि, जिसन कथा सुनाए हे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहि, कह नानक सच्चे साहिब जो पावै तवै चलावहि, एहो सोहिला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहिला, सत गुरु सुनाया एह तिनके मन वसया, जिन तुरहो लिखिया आया, एक फिर है कनेरे करह गल्ला गली कने ना पाया, कह नानक शब्द सोहिला सत गुरु सुनाया, पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया, पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यो पवित संगत।

कर्मी सहज न उपजय बिन सहज सहसा न जाय नय न जाय सहसा कित संयम रहे कर्म कमाए सहस जियो मलीन है कित संयम तोता जाय मन तो हो शब्द लाग हो हर स्योर हो चित लाय कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजय इह सहसा इव जाय जियो मैले बाहर हो निर्मल बाहर हो निर्मल जियो त मैले तिन जन्म जुए हारिया।

जियो निर्मल बहर हो निर्मल बहर हो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जनी खटिया भले से वणजारी कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह है गुर नाले जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई जी यह रह गुर नाले गुर के चरण हृदय।

जानी तत्तै सार न जानी, गुरु बज हो तत्तै सार न जानी। तिहि गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहण विहानी, गुर कृपा ते से जन जागे जना हर मन वसिया, बोलह अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए जिसनु अनदन हर लिव लागया, जागत रहण विहानी। माता किधर मह प्रतपाल करे सो क्या मन हो विसारी है, मन हो क्यों विसारी है, एवड दाता जे अगन मह आहार पहुंचावे। ओसनो केहो पोहे ना सकी जिसनो अपनी लिव लावे, अपने लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है। कह नानक एवड दाता सो क्या मन हो विसारी है, जैसी अगन उधर मह तैसी बाहर माया, माया अगन सवे को जे ही करते खेल रचाया। जात सपाणा ता जमया परवार भला पाया, लिव छुटकी लगी त्रिसना माया अमर वरताया। एह माया जित हर विसरे मुह उपजै पहु दूजा लाया, कह नानक गुर प्रसादी जना लिव लागी तनी विचे माया पाया। हर आप मुलक है मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए किसे विट हो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जी मिले तिसनो सिर सौ पिए विच हो आप जाए, जिस दा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए। हर आप मुलक है भगत ना के नानका जिन हर पल्ले पाए। हर रास मेरी मन वन जारा, हर रास मेरी मन वन जारा, सतगुर ते रास जानी हर हर नित जपिया जिया। लाहा खटे हो दिहाड़ी एहो तन तना मिलिया जिन हर आपे पाणा। कह नानक हर रास मेरी मन हो आवन जारा, ए रसना तू अन रस राज रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत कित चर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बहुड़ न तरसना लागे आए। एहो हर रस करमी पाईए सतगुरु मिले जिस आए। कह नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए।

गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मह आया मन चाओ पया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख न व्यापाए गुर चरण लागे दनस भागे अपना पिर जा पाए अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दस होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप। जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पाठ। दर्शन दीदार जी का ध्यान धर के बोलो जी। पांच प्यारे चार साहिब जादे चाली मुक्ते समूह।

रहे बेबाणी मड़ी मसाणी अंद न जाने फिर पछताणी। सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम नवसाए नानक।

ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याहिय जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय घर नौ निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह।

ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਦ ਬਿਨਿਆ ਵੰਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਨਾ ਜੋ ਸੇਵ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵ ਹੈ ਤੁਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੁਰਬਾਨਾ ਹਰ ਤਿਆਵੈ ਹੈ ਹਰ ਤਿਆਵੈ ਹੈ ਤੁਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗਮੈ ਸੁਖਵਾਸੀ ਸੇ ਮੁਕਤ ਪੈ ਜਿਨ ਹਰ ਤਿਆ ਜੀ ਤਿੰਨ ਤੁਟੀ ਚਮਕੀ ਫਾਸੀ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਤਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਾਜੀ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਤਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਬਲਜਾਸੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤਾ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਪ ਤਪ ਹੈ ਜਪੈ ਬੇਅੰਤਾ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਬੜੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰ ਸਾ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖੱਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਪਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅੰਬਰਬੁਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਜੇ ਵੜਿਆ ਵੰਨਾ ਕੋ ਤੂੰ ਜੋ ਜੋ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨਿਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ਤੁਦੀ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ ਤੁਦੀ ਆਪੇ ਸਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਤੁਦੀ ਆਪੇ ਸਿਜ ਸਭ ਗੋਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਸੇ ਕਾ ਜਾਨੋਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਡਾਂ ਸਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਤਿਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹੋਂ ਪਾਈ ਰਹਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਹੈ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ ਤੁਦੀ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆ ਮਿਲਾਇਆ ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਸਤੁਜੀ ਮਾਹੇ ਤੁਜਵੇਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ ਜੀ ਅਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲਾ ਪਿੰਜੋ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣਾ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦੀ ਆ ਵਖਾਨਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ ਤੁਦਵੇਂ ਦੂਜਾ ਵਰਨਾ ਕੋ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖ ਹੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਿਤ ਸਰਵਰ ਲੈ ਭੈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨੇ ਕੀਆ ਪਉ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗਨੀ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤੈਂ ਡੁੱਬੀ ਜਲੇ ਮਨ ਏਕ ਨੈ ਚੇਤ ਸਮੂੜ ਮੜਾ ਹਰ ਬਿਸਰੈ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾ ਨਾ ਹੋ ਜਦੀ ਸਦੀ ਨੀ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ ਪਰਨਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੀ ਸਰਨਾ
जिंदू नाई बिसरिया आसा महला पंजवा पई प्राप्त मानुक देहुरिया गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया अबर का तेरा कितना काम मिल साध संगत पचगे वंडा शरण जान लाग पव जल तरन कै जन्म वृत्ता जात रंग माया कह रहा जात संजम तरन न कमाया सिवा साधना जन हराया कहो नानक हम नीच करम्बा शरण परे की राखो शर्मा कभी बाज बेंती चौपई अमरी करो हाथ रचा पूर्ण होए चिदगी इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जन करो प्रतबारा हमरे दुष्ट वैतों का वह आप आदे मोहे बचाव हो सुखी बसे मोर परवारा शिव से सब करतारा मोर चानिज कर दे करिया सब रन को आसंगरिया पूर्ण हुई हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें चाड़ कोई अब न ध्यान जो बचाओ सो तुम दे पाओ शिव सिख मारे तारी है चुनचो सतन मारे मारी है आप हादे मुझे बरिया मन का त्रसन बरिया हुजो सदा मारे पचा श्री अस तो जो करो रचा राख लियो मोय राखन हारे साहिब संत साहेब प्यारे दीन बंद दुष्टन के अंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए सिजु अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सगल का की आत्मासा जमन का जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जमन का सलो सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन का सब जत बनायो देव दैत जचन बजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु संजय मारा नमस्कार तिसी को हमारी सगल प्रजा जन आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दिया सतरन को पल मोहम्मद किया काट काट के अंतर की जानता भले बुरे की पीर पहचानता चिंची दे कुंज रसूला सब पर कृपा दिट कर भूला संतन दो पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पी पहचाना घट घट के पटपट की जाना जब्द कर करा करता रहा प्रजा तर तब दे अपारा जब आकर करतो कब हो तुम मैं मृत दे सब हो जेते बदन शिष सब तारा आप अपनी बूझ उचारा तुम सभी तेरे तंदरालमा जानत वेद पेद अरयालम्बा निरंकार निर्विकार निर्लम्बा
आद अनिल अनाद संभाव ताका मूड उचारत भेदा जा को पे न पावत बेदा ताको कृपा हन अनुमानता मां मूढ़ कछ भेद न जानता महादेव को कह सदा सेवा धनका का चिंतन पेवा आप अपनी बुद्धै जती बरनंद पिन पिन तोहे तेती तुमरा लखन जाय पसारा केवे सजा प्रथम संसारा एक रूप अनुस्वरूपा रंग पयो राव की पूपा अंड जेर सिद्ध किनी उद्भिज खान बौरज दिनी कौ भू राजा वह बैठा कौ सिमट पयो शंकर इकैठा श्री सिर दिखाए चंबावा आद जगाद सरूस यंपावा अब रचा मेरी तुम करो सिख उबार ऐसी कह संग्रह दुष्ट जिदे उठत उत्पाता सगल मलेश करो रन काता जे अस तो तसर नहीं परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे भुख जन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बात आए है ताके काल निकने अह रचा हुए ताए सब काला दुष्ट अरि टरे तत्काला कृपा देतन जाय निहर हो ताके ता तनक मोहर हो रिद सदकर्म सब होई दुष्ट छा सह सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संवारा काल पाते ताई उबारा जिंदर नाम त्यारो कहा दर्द दुष्ट दो तेरा खड़ के तो मैं शरण तिहारी आप हाथ लियो बाई सर्व ठौर मोहो साई दुष्ट दोग ते लियो बचाई खड़ग के तो मैं शरण तिहारी आप हाथ लियो बाई सर्व ठौर मोहो साई दुष्ट दोग ते लियो बचाई सवैया पाए गए जब ते तुमरे तब ते कुआ तरे निया न्या राम रही पुराण कुराना अनेक मते न मान्या सिमर सातर भेद सब भेद कह हम एक न जान्या श्री असपान कृपा तुमरी कारा

बाहें कह की लाज असा गोविंद दास तुहार सगल द्वार को चाड़ के गयो तुहारो द्वारा बाहें कह की लाज असा गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तैं पाया सहज सेती मन वजिया वादाइया राग रतन परवार परियां सबद गावनी आईया सबदों तैं गाव हो हरी गेरा मन जिनी बसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर ना रहो तुम मन मेरे दू सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा काज सब सवारना सवना गलां समरत स्वामी

साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा, करता तेरा सब कुछ है। जिस देह सो पावै सदा शिव सलाह तेरी, ना मन वसावै नाम जिनके मन वसिया। बाजे शब्द कनेरे कह नानको सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा। जिन पुकरा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब बुझाइया सदा कुर्बान किता गुर बिटो हो। जिस दिया ए बड़ी आईया कह नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। बाजे पंच शब्द घर सपागै, घर सपागै शब्द बाजे। कला जितकर धारिया पंच दुत वास किते, काल कंटक मारिया तुर कर पया तो जिनको। से नाम हर कह लागे कह नानक तै सुख हुआ। तित कर अनद बाजे अनंद सुनो बड पागी हो, सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पर पाया। उतरे सगल बिसूरे दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै ससे, पूरे गुरते जान सुनते पुनीता कहते पवेता। सतगुर या पर पूरे बिनवंद नानक गुर चरण लागे। वाजे अनहद तोरे

नानक एहो तन सारा सो को डल गुरु सेविया एनस सहज सुभाए दर्शन प्रसिया गुरु कै।

हस्ती सिरजियो अंक सहाय, एरन ज्यों सिर दे, बंतन यागै राकै, उबी सेव करे, यूं गुरमुखी आप निवारिया, सब राज सृष्टि गाले, नानक गुरमुख बुझिया, जां आपे नदर करे, महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया, आए ते परवान, नानक कोल उद्धार है अपना, दरगह है पाव है मां, पौड़ी गुरमुख सखिया से गुरु में लाइया, एक सेवक गुर पासा, एक गुर कारे लाइया, जिन्ना गुर प्यारा मन चेता, तिन्ना भाव गुरु देवाइया, गुर सिखा एको प्यारा, गुर मित्ता पुत्ता भाइया, गुर सतगुर बोलो सब, गुर सतगुर बोलो सब, गुर आख जिवाइया, गुर सतगुर बोलो सब, गुर आख गुरु जिवाइया, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।